0: आ गया पॉइंट पर।
1: ए, राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे वो भी मिला यहाँ पर नहीं। दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढो प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया।
3: सुजी,
1: राहुल मिला क्या?
3: नहीं।